सिर्फ मिठियां ही स्वीट चीजा ही नहीं, और बहुत सारी चीजा जो प्यारियां लगदियां स्वादलियां लगदियां, कहिंदे मिठियां समझ के उन्होंने खाया पर कौड़ा उपजा साग, पर उन्हों का रिजल्ट जो है अखीर दे विच जाके वो स्वाद कौड़ा निकले, उस दे विच कुड़त्तन निकली, शरीर ने ही वह बीजिया पर शरीर में ही वह भोगना पै गया, भोगं त रोगं, शरीर ने ही भोगां दी मौज माणी पर शरीर नूं हुण रोग भी सहने पैने हैं, भोगं त रोगं, जितने ज्यादा भोग उतने ज्यादा रोग, जितने ज्यादा डिशिज उतने ज्यादा डिजीज। गुरु बाबा जी कहते हैं ये तन मेरा कोई सफला करदा है, वरना इस तन दे नाल मैं रोग अते दुख अते पेन ही ग्रो करदा हां, वो खुद मैनू खानी पैंदी है, उदों बड़ी तकलीफ हुंदी है। महाराज जी एक जगह होर बाणी चाकदे हन, कहिंदे हन जे 100 वरिया मिठा खाए, कहिंदे हन

जितने भी शरीर दे रस हन उतने ही दुख लगते। इस करके महाराज जी ने एक पंक्ति दे विच ग्रिस्तियां नू खास करके ग्रिस्तियां नू यह समझाया है कि जे तुसी ग्रिस्ती हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुहानू अकाल पुरख वाहिगुरु ने जां सतगुरु ने एग्जेम्पशन दे दित्ती है कि हुण तुसी जो मर्जी खाओ पियो भोगो रस माणो। नो, तुहानू भी योगियां ऋषियां मुनियां वाली ही साधना तपस्या करनी है भावें तुसी ग्रिस्ती हो, क्योंकि असीं कई दफा सोच लैंदे हां ना कि असीं तां ग्रिस्ती लोग हां, असीं कोई साधु संत थोड़ो, अपने आप नूं आप ही एक्सक्यूज कर लैंदे हां कि साडी सोशल लाइफ भी है, असीं ग्रिस्ती हां। हुण गुरु साहिब ग्रिस्ती किस नूं कहिंदे हन इह नहीं असीं सुणिया, इह नहीं असीं सुणिया, असीं सिर्फ इन्ना ही सुणिया कि गुरु बाबा नानक देव जी महाराज ने ग्रिस्त धर्म नूं बहुत उच्चा आख्या, यह सुने, ठीक है ना, गुरु नानक साहब महाराज ने ग्रिस्त धर्म नूं प्रवान किया, पर किस किस्म दे ग्रिस्त धर्म नूं प्रवान किया ए दसना भी मुश्किल है, इस नूं मनना भी बड़ा मुश्किल है, तो सानू शायद किसी ने दसिया भी ना हो। गुरु बाबा जी दसते हैं कि ए ग्रिस्ती जे तू सोचे कि ग्रिस्ती होने के नाल तेनू एग्जेम्पशन मिल गई है कि तू हुण बॉडी दे लैवल दे उत्ते रह के सारे बॉडी दे रस जो टेस सन उन्हां नूं माणी जा, तेनू कोई तपस्या करन दी कंट्रोल करन दी अपने उत्ते कोई मास्टरी करन दी लोड़ नहीं है, क्योंकि चूं तू ग्रिस्ती है इस करके यू आर अलाउड, वे कहिंदे ऐसी गल नहीं। हुण पंक्ति सुनने वाली है बहुत प्यारी, कहिंदे

0: है गृहस्थी, इसके अर्थ सुनो।
1: सो गृही जो निग्रह करे,
0: कहते गृहस्थी वो है जो निग्रह करे। निग्रह का मतलब, निग्रह का मतलब है कि अपनिया इन्हें सेंसुअल प्लेजर्स के उत्ते अपनी मास्टरी अचीव करे, इन्हों का मास्टर बने, इन्हों उत्ते काबू पाए, इन्हों उत्ते कंट्रोल करन दा अभ्यास करे। बेशक आहिस्ता आहिस्ता करे, आहिस्ता आहिस्ता करे, पर एक दिन ऐसा उसके जीवन दे विच आए कि वो इन्हों इंद्रिया दे रसां दा गुलाम न रहे। क्योंकि जो इंद्रिया दे रसां दा ही गुलाम रह गया, वो शरीर दे ही तल ते रह गया, वो शरीर तो बॉडी तो अगा इवॉल्व नहीं होया। जो बॉडी तो अगा इवॉल्व नहीं होया, उसनू द्वारा फिर बॉडी दे विच पाया जाएगा, वो फिर जन्म मरण दे विचों गेट चो मुक्त नहीं होया, द्वारा उसे ही गेट दे विचों फिर आ जाएगा। और यह भी पता नहीं किस किस्म की बॉडी च पाया जाएगा, यह भी कोई पता नहीं ना। जो शरीर दे लेवल ते अपनी लाइफ नू एंड करता है, दैट विल कम बैक इन टू द फॉर्म। तो महाराज जी आखते हैं सो गृही, ओ गृहस्थी है जेड़ा गृहस्थी हुंदिया होया, गृहस्थे विच रहिंदिया होया की प्रैक्टिस करे, अपनिया इन्हां इंद्रिया दे तमाम रसां नू मास्टर कर लै, कंट्रोल च कर लै, काबू च कर लै, ते इन्हां नू जित लै। सो गृही जो निग्रह करे। अगली गल, जप और तप। जप इज मेडिटेशन, नाम सिमरन। तप है अपने जीवन दियां, अपने बिहेवियर दियां तमाम जो जो लो नेचर दे जो साडे सुभाव हन, जितनी भी साडी लोअर नेचर है, पशुआं वाले सुभाव हन, अपने आचरण नू, अपने बिहेवियर नू, अपने लाइफ स्टाइल नू तब्दील करन दी तपस्या करे, तपस्या करे। तो नंबर एक, इंद्रियां उत्ते इन्हां दे रसां कसां उत्ते काबू पाउण दा अभ्यास करे, ए तप करे। दूसरा, अपने आचरण अपने कर्मां नू निर्मल बनाण दे वास्ते तपस्या करे, जप तप संजम, अते अपनी जिंदगी च संजम लियावे। संजम दा मतलब कि ओ अपनिया नीड्स नू कटावे, अपनिया नीड्स नू अननेसेसरी ना बधाई जाए। पदार्थां नू देख के मार्केट दे विच, बाजार दे विच जो कुछ भी एडवरटाइज किया जाता है, यह जरूरी नहीं है कि उसने खरीदना ही। बहुत वाइजली अपनिया नीड्स नू समझे, अते अपनिया नीड्स नू वध तो वध सादगी दे विच, सिंपलिसिटी दे विच रखने की कोशिश करे। यह है मतलब संजम दा, कि लाइफ नू बहुत होवे बहुत ब्यूटीफुल, एलिगेंट, पर बड़ी सिंपल होवे, बहुत सिंपल होवे, और ऐसी होवे कि जिसनू मेंटेन करन दे वास्ते उसनू दिन रात भटकना ना पवे। क्योंकि कई दफा सानू अपने एक्सपेंसेस पूरे करनू ही, अपने बिल्स पूरे करनू ही सारा दिन रात सानू भटकना पैंदा है, जस्ट टू पे अवर बिल्स। पर असी उतने क्रिएट ही क्यों करी। कबीर साहब ने आख्या है, सादा जीवन जियो। गृहस्थी वो है जिस दे जीवन दे विच, कहिंदे जिहड़ा गृहस्थी जीवन दे विच बैठा होया इन्हां चीजां उत्ते कम करदा है, अपनिया इंद्रियां नू कंट्रोल करदा है, इंद्रियां दे स्वादां दे उत्ते ओह फतेह पाउंदा है, अते अपने आचरण नू ओदी तपस्या करता है, अते अपनी जिंदगी च संजम लियांदा है। जप तप संजम भिख्या करे, इस गल दी वाहिगुरु तो भिख्या मंगदा है। पुन दान का करे शरीर, कहिंदे ओदा जिहड़ा शरीर है ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਲਵੇ। ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਗ੍ਰਿਸਤੀ, ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਾਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਓ ਇਸਨੂੰ।

तो साड़ी विचार ये चल पे सी कि असी महाराज जी की पवित्र बाणी दे विचों जो सानू तन मिलिया है इसकी सानू पूरी खबर नहीं है कि एक ही वस्तु है। इस दे नाल असी की करना है, इस दे विच की कुछ है, इसका सानू पूरा ज्ञान नहीं है। असी एक बेहोशी जिही दे विच अपना जीवन जो है वो गुजारी जाने। सो गुरु बाबा जी की बाणी दे विचों असां तन दे संबंध दे विच जो सानू ज्ञान विचार शब्दां दे राही मिलते हैं वो असी समझना है। दो नुक्ते आप जी की सेवा च दास ने कल अर्ज किए सी। नंबर एक, ये दुर्लभ है, इस तों वध के कीमती शाय कोई होर नहीं। नंबर दो, ये रब दा मंदर है। आओ अज तीसरा नुक्ता आप जी के सामने रखिए। गुरु साहब आखते हैं ये रब दी कामणी है, ये जरा शरीर है ये रब दी पत्नी है, रब दी कामणी है, अते उसने आप इसनू अपनी मर्जी दे नाल डिजाइन किया, आप उसनू उसने सुंदरताई बख्शी है, आप उसने इसनू सवारिया शंगारिया है। ये शरीर रब दी कामणी है, रब दी औरत। तो अगर साढ़े पास यह है तो एक रब की अमानत, यह रब की कामणी है। महाराज जी अपनी बाणी च आखते हैं

0: अत सवाले का मतलब अति खूबसूरत, हर काया बहुत खूबसूरत है, कोई ऐसा नहीं भी घट खूबसूरत है तो ज्यादा खूबसूरत, बदसूरत असी बना लेने वरना हर काया अपने आप यूनीक रब की कामणी। कहते हैं
1: काया कामण,
0: कामणी मैंने औरत,
1: अत सवाले फिर वसे जिस नाले,
0: अते फिर जिस दे नाल रहिंदा है वो अपनी औरत दे नाल रहिंदा है, इस तो दूर नहीं जांदा, इस दे रोम रोम दे विच समाया है, उसनू अपनी औरत दे नाल इतना प्यार है, अपनी कामणी नाल इतना प्यार है, तो इस दे अंदर रहिंदा है, इस दे संग साथ रहिंदा है,

एक पॉइंट ए। दूसरा पॉइंट आप जी की सेवा च ए रखिया है कि गृहस्थी कौन है। गृहस्थी ओ नहीं जो दुनिया के स्वादा दे विच खोया पिया है, गृहस्थी ओ है जिहड़ा गृहस्थ दे विच रहिंदिया होया अपनियां इंद्रियां दे स्वादा दे उत्ते, टेस्ट दे उत्ते, इन्हां दीयां कमजोरियां दे उत्ते कहिंदे मास्टरी अचीव करदा है, कंट्रोल करदा है अते इन्हां नूं जितदा है। अते जप तप संजम भिख्या करे, एक भिख्या इक्को ही जो ओह दान वाहिगुरु तो मंगदा है कि मैनू जप दे अते तप दे, तपस्या दे ताकि मैं मेहनत कर सकूं। पुन दान का करे शरीर, अपने शरीर नूं पुन दान दा ही एक रूप बना लवे बस, कि इस शरीर दे नाल उसने पुन दान तो पाव है सेवा अते परोपकार अते दूसरियां दे कम आना। अगर ए शरीर दूसरियां दे कम नहीं आंदा तो यह बेकार है। ए नुक्ता। और तीसरा नुक्ता जो 13 नुक्ते शुरू किए हुए हैं, अज उन्हां 13 नुक्तियां दे विचों तीसरा नुक्ता आप जी की सेवा च यह रखिया है कि यह अकाल पुरख वाहिगुरु की कामणी है, यह उसकी औरत है, इसनों उस दे नालों अगर विछोड़ दोगे ये कुमला जाएगी, ये मर जाएगी, ये रोएगी, ये गमगीन होएगी, ये उदास होएगी। फूल चुप दिखेवा आओ एक बार इस पंक्ति में।

जवन काल सब जगत बनायो देव दै जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सही गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सिवकन को सिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बध कियो कट कट के अंतर की जान पले बुरे की पीर पछान चीटी ते कुंचर अस्तूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख

जब उन तर्क करा कर तारा परजा दर्द तब दे अपारा जब आकर कथो कबू तुम मैं मिलत दे तर सबू जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत दरालम जान भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लम आद अनिल अनाथ असम ताका मूड उचारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमान महामूड

आप अपनी बुद्ध है जेती वर्ण भिन्न भिन्न तुहित तुमरा लखान जाए पसारा कह बिजा प्रथम संसारा एक के रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहीं पूपा अंड जेर जसेत जकीनी उत्पुष खान बहु रच दीनी कहूँ फूल राजा है बैठा कहूँ सिमट पयो संकरे कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आज गात स्वरूप स्वयंपव अवृच्छा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट।

जे अस्तज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दोख तह मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जोकल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नि आए हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरष्ट रहे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके ताप तनक मोहर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हुई दुष्ट छा छह सके न कोई एक बार जिन तुम्हें सवार काल पास ते तय उबारा जिन्नर नाम तहारो कहा दर्द दुष्ट दो।

ध्यान अंतर्गत तेज पुंज तेहु लोग परगासी देखत दर्श पटिक ब्रह्म पजित दुख पर हर सुख सहज बिगासें सेवक सिख सदा आत्म

माया दे मोह विच मगन है, ओ अंधेरे विच पटक रहा है। अंधेरे विच तुरन वाला डिगन तो बच नहीं सकता। अंधेरे विच जिड़ा तुर पवे ओ भटक जांदा, ओ मंजिल ते नहीं पहुंच पांदा। ते अंधेरे विच कदों भटकदा मनुख, जदों देवन हार नूं भुला देंदा। जिस वाहिगुरु ने सोना मनुच्छा जन्म बख्शिया, जिस वाहिगुरु ने 36 प्रकार दे भोजन बख्शे हन, तेरे पहरन लई वस्त्र बख्शे हन, तेरे रहन लई महल मारियां बख्शिश कीतियां, अनेकां उपकार कीते जिस वाहिगुरु ने, माया दे मोह विच आके मनुख उसनूं जदों भुलाउंदा है तां फिर इसनूं दुख आके घेरा घतदे हन। ए समझदा मेरा अपना बल है, मेरी अपनी सियाणप है, जो कुछ अज मैं हां ए मेरी सियाणप है। उस देन हार नूं जदों भुल जांदा है तां फिर ए दुखां विच पटकदा। इसलिए हजूर कहंदे ने, भाई चित्र गुप्त जब लेखा मांगे। चित्र जो हन ए साडे दिन दे कर्म लिखदे हन, जो कुछ असी करदे हां। गुप्त जो हन ए रात दे साडे कर्म लिखदे हन, असी की करदे हां। इस लई हजूर कहंदे हन, भाई चित्र गुप्त जदों तेरा चिट्ठा रखणगे अकाल पुरख अगे, उस वेले तेरा पड़दा कौन तकेगा, तेरी कौन सहायता करेगा। इसलिए तू भले कर्म कर, जिस करके तेरा जो इत्थे कर्म लिखिया जाए वो चंगा लिखिया जाए। चित्र गुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पढ़दा तेरा ढाका।

गुरु अर्जन देव पातशाह ये छबद दिया अखीरलिया तुकां विच अरदास कर दिया हे अकाल पुरख वाहिगुरु हे दीना बंधु दुख बंजन अकाल पुरख जियो दीन दयाल पूरन दुख पंजन तुम बिन ओट न काई हुन तेरे बिना कोई ओट नहीं कोई आसरा नहीं हुन तू ही सानू छडा सकदा है काढ लियो संसार सागर में नानक प्रभु शरण आई मैं तेरी शरण विच हां मैनू इस संसार सागर तो कट ले पार कर दे आओ अरदास करिए।

राग गौड़ी बैरागण विच ऋषभ धैवत कोमल दोवें निषाद अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस राग विच गंधार ते पंचम वर्जित हैं। इस दी जाति औड़व वादी ऋषभ संवादी धैवत अते समा सवेर दा है। मैं बंजारन राम की शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।

संतन का रखा उसत कर कर जीवा नानक नाम महारस लिखा अंदिन मंथन पुस्तक करया करो भाई गुरु जी पुस्तक मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निम्न वसना अमृत पियो सदा सुहेला पुस्तक गुरु चंगा कर दिता है ना ओदे विच भी रह के धन गुरु नानक कहते जी वाहिगुरु ने पुत्र की दात दिती है पुत्र नाल भी प्यार करो पर ओदे नाल प्यार जरूर करो जिन्हें पुत्र बख्शिया है आखिर जी गुरु बाबा जी कह लगे निंदा करनी है अपनी करो उस्तुत करनी है गुरु दी उस्तुत करो ये गुरुमुख है ये गुरुमुख दी चाहिए तो कह रहे सात संगत यह वचन ना बोलिए जिदे किसी का मन दुख है हरी जी ने कहा सबना मन मालिक ठाहण मूल मचंगवा जे तो प्रिया जी सिके तो न खाई गुरु नानक का सिख जिदा गुरु इतना मिठा हो सिख तो कदे नहीं तोड़ना न पड़े प्यार भरे वचन चंगे वचन करो भाई चंगयाई दुनिया में बदलेगी सिख की यह ड्यूटी ड्यूटी है आप जपो अमरे धाम की।

ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं भटका, नाम रहो सब। माता जी चले गए, पिताजी चले गए, बाबा जी रहते। शस्त्र विद्या सखण लग पे, गुरबाणी दी विद्या सखण लग पे। वेले बह के मैं रोटियां नहीं पाड़नी, होर भी कई कुछ। अज आप जी दे नाल बाबा जी आप ही ओ सीन सांझा करान जिथे जाना चाहनी हां। एक दिन बाबा दीप सिंह जी संगत दे जूठे कौले मांजदे पे थे। आज ये गुण ले जाना बाबा दीप सिंह होने ते कौले मांजा। बाबा ही कौले मांजदे पे, कोला हाथ चे नाल सिमरन नाल कोला, नाल सिमरन नाल कोला। इन्नी लिव लग के कोला मांजदे पे के गुरु गोबिंद सिंह जी नू 10 मिंट हो गए कोल खड़िया पिछे। बाबा जी का उधर लिव जदों सिंह नाल हुंदे सी गुरु गोबिंद सिंह बाबा जी, जदों ध्यान वेख्या साहब खड़े ने ते कहंदे कौला हाथ विच ही है, सवार नाल लिबड़िया, हाथ भी लिबड़े ने।

मित्र कुटुंब तन पवन मम ए मेरे मित्र मेरा कुटुंब ए तन रहण वास्ते सोने पवन समृद्ध कहंदे ने सगल समग्री ए मेरा कुटुंब मेरे मित्र तन दौलत रहण वास्ते घर ये सारी जिहड़ी समग्री है कृपा करतास खालसे ने

है ने गुरु नानक दा रूप, पर जे निम्रता वल जाइए ते किसे तक जा पहुंचे ने, कि सारा कुछ खालसे ने कृपा करके मैनू दिता है। कवि सुंदरदास जेड़े आनंदपुर साहब रहा करते सन, वो कहंदा है मैं आनंदपुर साहब रह के देखे है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का दरबार, कि जिन्हां राजियां महाराजियां नूं मिलना बड़ा औखा, जिन्हां राजियां महाराजियां दी एक झलक देखनी बड़ी औखी है, उन्हां राजियां महाराजियां नूं मैं गुरु गोबिंद सिंह दे दरबार ते दरबान बन के पहरेदार बन के खलोते देखे है। ओ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिदे दर ते वड्डे वड्डे राजे महाराजे आके झुकदे ने, ओ गुरु इतनी निम्रता, इस निम्रता विच आके कह रहे ने कि मेरा कुटुंब, मेरे मित्र तन रहण वास्ते घर, सब कुछ खालसे ने।

माधोजी सत्संगत मिले सो तरिया, सत्संगत मिले सो तरिया, साध संगत हुए निर्मला। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत, साध संगत होए निर्मला, कटिए जम की फांस। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, मेरे माधो जी सत्संगत मिले सो तरिया, कहे कबीर सुनो रे संतो।

या संगत विच जेड़ा आ जांदा है उतर जांदा है, जेड़ा संगत करदा है उसका पार उतारा हो जांदा है। संगत आप भी संगत कर रहे, संगत कई प्रकार दी, पर जेड़ी संगत आप कर रहे हो साहबा ने इसनू साध संगत करके आखे उत्तम करके के श्रेष्ठ पावन पवित्र करके के कि संगत साध संगत पाक सत दे नाल जुड़ना साध संगत जिथे सत एक अकाल पुरख की आराधना हो रही होवे उसनू आखदे ने साध संगत। संगत किनू कहिंदे ने?

0: संगत कैसी जानी है।
1: केड़ी संगत, कैसी संगत, केहो जी संगत।
0: सत्संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम विखानी है।
1: ओ संगत जिथे एको नाम दी आराधना हो रही, सारे एक नाम दे नाल जुड़े ने, ओ साध संगत।
0: साध संगत मिल होए तराबा,
1: ते संगत करम दे नाल वस्तु केड़ी मिलदी।
0: बिसर गई सब तात पराई।
1: इंसान कितनी भी कोशिश करे तात पराई नहीं छड़ सकता। तात पराई दा पाव है जलन, ईरखा, किसे नू वेख के जलना। तात पराई नहीं छड़दा, पर सैम आख देने जीव जदों संगत विच आ जांदा है ना सब कुछ छड़ जांदा।
0: बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई।
1: कितना संगत विच आउन दा लाभ है, जदों संगत विच आउंदा है तात पराई भुल जांदी।
0: इत्थे ही बस नहीं, ना को बैरी नहीं बिगाना।
1: वैरी भी सज्जन नजर आने लग पैंदा, दुश्मन भी मित्र लग पैंदा, क्योंकि संगत विच आ गए।
0: ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संग हमको बणियाई।
1: ये प्राप्त किवें होया,
0: जो प्रभु कीनो